अस्सलाम वालेकुम सामने, हम सदाए तुर्किया से मुखातिब हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 18 जुलाई को सप्ताह इस वक्त अंकरा के मकामी वक्त के मुताबिक सुपहर के 3, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम के 5, भारत के वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 और बांग्लादेश के वक्त के मुताबिक शाम के 6 बजे हैं। सामने आप मनियात को शॉर्टवेव 16 मीटर बैंड 17,580 किलोहर्ट्ज के अलावा तुर्कसा 3 ईस्ट 4 वेस्ट पर भी सुन सकते हैं। सामिन, आज हमारे प्रोग्राम में अलग तरतीब खबरें होंगी, उसके बाद से प्रोग्राम देने वाले हाथ की कहानियों और फीचर पेश किए जाएंगे। हमारा प्रोग्राम हस्ब मामूल खबरों के खुलासे से अख्ताम पजीर होगा। आज आपके मेजबान हैं इमरान ओपल।

भाई साहब, पहले आज की खास खास खबरों का खुलासा समाप्त माइए। तुर्किया फात व हंगामे हालात के दायरे के मुताबिक हफ्ते की सुबह सवेरे तुर्किया के मशरक की सूबा मलातिया में 5 की शिद्दत का जलजला आया है। मशरक उस्तम कशीद की 7वें मुसलसल रात में शिद्दत इख्तियार कर गई। अमरीका ईरान कशीद की बढ़ रही है तो कौमदीदन शहरी इलाकों पर हमलों की मूसम्मत की है। तुर्किया और अमरीका कासा पाबंदियां और F-35 तनाजे के हवाले से हल के करीब हैं। एक यूक्रेन ड्रोन हमले में मगरबी रूस के एक लॉजिस्टिक मरकज पर 7 अफराद हलाक और 24 जख्मी हो गए। अब खबरें तफसील के साथ। तुर्किया अफात हंगामे हालात के इदारे के मुताबिक हफ्ते के सुबह सवेरे तुर्किया के मशरक की सूबा मलातिया में 5 की शिद्दत का जलजला आया है। अफात के मुताबिक जलजला मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6:20 पर आया। उसका मरकज जिला बतालगाजी था, जिसकी गहराई 15.59 किलोमीटर बताई गई। झटके पड़ोसी सूबों अलाजी, अदियामान, तुंजेली, शान उल्फा में महसूस किए गए। इदारे का कहना है कि जलजे के फौरन बाद नुकसान या जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। माहौलिया शहरी तरक्की मौसमी तब्दीली के वजीर मुराद कुरुम ने तुर्किया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एन सोशियल पर लिखा है कि जिला पताल काजिम जलजे के बाद अब तक कोई मनफी नतीजा सामने नहीं आया, लेकिन हम तमाम रिपोर्ट्स का जायजा ले रहे हैं। मशरिक़ वस्ती में कशीद की 7वें मुसलसल रात में शिद्दत इख्तियार कर गई। ईरान ने अमरीकी हमलों में 3 इलाकों की इत्तला दी। कुवैत, बहरीन, उर्दन में मुतद अमरीकी फौजी मकामात पर हमले किए। पाकिस्तानी इंकलाब ने हफ्ते की सुबह कहा कि अब नहरबर्स में 2 तेल पड़ताल जहाज अमरीकी खुफिया एजेंसियों की हदायत पर माइनों से टकराने के बाद फट गए, जिसकी अमरीकी फौज ने तेज से तरदीद कर दी है। पाकिस्तानी इंकलाब ने सरकारी टेलीविजन पर यह बताया कि उन्होंने इस अहम समुद्री गुजरगाह से गुजरने की कोशिश करने वाली 4 को रोक दिया है। पेरिस ने अमरीकी फौज ने ईरान पर ऐसे हमलों की इत्तला दी, जो अमरीकी सेंट्रल कमांड के एक बयान के मुताबिक इसरानी अस्करी सलाहियतों को कमजोर करने के लिए किए गए थे। दुश्मनों के दोबारा मुतसादम होने के बाद यह सबसे बड़ी कशीदगी थी। ईरान ने अमरीकी फौज पर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया, जिनमें एक हवाई अड्डा, एक रेलवे स्टेशन, 2 पुल शामिल है। वो कहा कि इसने खत्ते भर में अमरीकी असासों को निशाना बनाया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी इंसानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की वार्निंग दी थी, मगर जुम्मे को अमरीकी की जानब से तस्दीक नहीं हुई कि अमरीकी फौज ने ऐसा करना शुरू कर दिया है या नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर फौजी मशीर मेयर जनरल मोहसिन रजाई ने कहा, अगर अमरीकी हमले अगले 2-3 दिन तक जारी रहे तो तेहरान मसीह पाने पर जहराना कार्रवाई दोबारा शुरू कर देगा। ईरान न्यूज एजेंसी IRIB के मुताबिक रजाई ने बताया, ईरान अब खुद को सिर्फ मुतकाबिल एन के एन जवाब तक महदूद नहीं रखेगा और कोई सियासी सरहद महफूज नहीं रहेगी। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी इरनाके ने हफ्ते को रिपोर्ट किया, अमरीकी हमलों में सुबह और मुस्कान के जनूबी हिस्से में 3 अफराद हलाक और 8 जख्मी हुए। ईरान की फौज ने कहा है इसने अमरीकी हमलों के जवाब में कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी फौजी अहताफ को निशाना बनाया है। अमरीका ईरान कशीदगी बढ़ रही है तो अकवाम मुत्तहिदा ने शहरी इलाकों पर हमलों की मुज़म्मत की है। अकवाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जमान फरहान हक ने कहा, सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुटेरेश अमरीका ईरान के दरमियान बढ़ते हुए फौजी तनाज में खसूस सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के हवाले से सख्त फिक्रमंद है। हक ने इस तरह के हमलों को नकाबे कबूल करार दिया। गुटेरेश के टूट यकीन का इरादा किया कि इस तनाज का कोई फौजी हल नहीं। हक के तबसरा जनूबी

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: अमेरिका ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कनाडा पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है ताकि जंगलात की आग के धुएं के अखराजात का अजाला किया जा सके, जिसने अमेरिका के बड़े हिस्सों को घेर रखा है। कनाडा और शुमाली मिनेसोटा से उतरने वाला गंभीर जंगलाती धुआं पूरे अमेरिका में गैर सेहतमंद फजाई मेयार का इंतबाह दे रहा है। कैनेडियन वाइल्ड लैंड फायर इंफॉर्मेशन सिस्टम के मुताबिक हफ्ते तक कनाडा में 937 मकाम पर आग लगी, जिनमें से ज्यादातर कंट्रोल से बाहर थी। ट्रंप ने जुम्मे को ट्रुथ सोशल पर कहा, जानबूझ कर की गई गफलत और सालाना मामूल बनती जा रही है, जिसकी कीमत अमरीकी बशिंदों को अरबों डॉलर उठानी पड़ रही है। और मजीद गैस आलूदगी के अखराज लाजमी टैरिफ में शामिल किए जाने चाहिए, जो कनाडा फिलहाल अदा कर रहा है। ट्रंप ने कनाडा पर इल्जाम आयद किया वो अपने जंगलात को दुरुस्त तरीके से बरकरार नहीं रख रहा और बुनियादी जंगलाती निजाम थलचट हटाने का काम नहीं कर रहा। कनाडा की इमरजेंसी मैनेजमेंट वजीर एलनूर एलोवेस्की ने कहा, कनाडा अमरीका मुसलसल रबते में उन्होंने जंगलाती आगों से लड़ने में बाहमी तावन की तवील तारीख की तरफ इशारा भी किया। उन्होंने कहा, कनाडा ने 2020 से जंगलात की पायदारी आग की रोकथाम में $12 बिलियन की सरमाकारी की है। सलोदगी ने न्यू जर्सी के खुले स्टेडियम इतवार को होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल के हवाले से खदशात खड़े कर दिए हैं। न्यू जर्सी न्यूयॉर्क में मेट्रो एरिया में हवा हसास ग्रुपों के लिए गैर सेहतमंद हो सकती है, जो जुमेरात के स्मोक के बाद एक हद तक बेहतरी थी, जब मैनहट्टन का स्काई लाइन बामुश्किल दिखाई दे रहा था। लेकिन नेशनल वेदर सर्विस ने खबरदार किया, धुआं रात के हफ्ते की सुबह तक गाढ़ा हो सकता है। हाउस वर्ल्ड कप टास्क फोर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड्रियो जोलिन ने ब्रीफिंग में कहा, टूर्नामेंट के मुंतजमीन करीबी तौर पर इस हवाले से निगरानी का काम कर रहे हैं। इराक की वजारत उज़्मा के दफ्तर के मुताबिक इराक ने अमरीकी कंपनियों के साथ 48 माहदे शराकतें तय की, जिनमें से कई तेल के शुबे से मुतालिक हैं। ये माहदे वज़ीर आज़म अली ज़ैदी के दौरे अमरीका के दौरान किए गए। तेल से मालामाल इराक परसों के जंग इंतशार से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, मगर फिर भी खराब बुनियादी ढांचा, नाकाम अवामी खदमात, बद इंतजामी जड़ पकड़ी बदअनवानी का शिकार है। खास तौर पर मशरिक वस्ती की जंग के बायस तेल की बरामदार रुक जाने से आमदनी में कमी होने के फौरन बाद फौरी तौर पर इक्तसादी इमदाद का मुहताज है। इराकी रहनुमा के मीडिया दफ्तर ने कहा, कुल 48 माहदों तफाहम नामों तावन माहदों और शराकतदारी के ऐलान पर दस्तखत किए गए हैं, जो इराक और अमरीका के अवामी निजी शोबों के इदारों के दरमियान थे। इनमें वजारत तेल व वजारत बिजली के साथ एक्सिम मोबाइल के BRGE वोरनौदा शेल और हालीबर्टन के साथ तावन और शराकतें शामिल हैं। इस इराक शाम के दरमियान बड़े खाम तेल पाइपलाइन की तमीर से मुतलक मुतदद अमूर भी इसमें शामिल हैं। इराक ने स्टार लिंक के साथ भी एक मुआहदा किया है, जो आलमी सेटेलाइट मौसाती शोबे पर गालिब है, ताकि मुल्क में इसकी खिदमात मुतारफ कराई जा सके। मंगल को व्हाइट हाउस में एक मुलाकात के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ैदी की तारीफ करते हुए उन्हें चैंपियन करार दिया। ज़ैदी जो एक ताजर अमरीकी हमायत के साथ इस साल इक्तदार में, जब ट्रंप ने एक दूसरे उम्मीदवार को वीटो किया था। उन्होंने इराक की नाजुक मीशत को मजबूत करने ऐसी ईरान नवाज मुसल्ला तंजीमों को गैर मुसल्ला करने का अज़्म जाहिर किया, जो अमरीकी तंजीमात को निशाना बनाती रही है। इराक तवील अरसे से इत्तेहादी मुल्क अमरीका और हमसाय ईरान के बाहमी मुकाबल असर रसूख के दरमियान तवाज़ुन कायम बरकरार रखने की कोशिश करता रहा है। इसके साथ इस तरह तुर्किया से खबरें खत्म हुई।
2: सना बि शेय ओलुर दिए
1: सन नाम सदाए तुर्किया की उर्दू सर्विस से मुखातिब है। लीजिए अब तुर्किया के मायनास गुलकार ओसजान देनिस और निरान उनसाल की आवाज में तुर्की लगी।

पहुंचाने का नाम है। अब्दी नेकी के इन मामारों ने अपने पीछे सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि एक हयात बख्श सकाफत छोड़ी। वो जानते थे कि माल के असल हकदार सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरी इंसानियत है। अगले हिस्से में हम इस शफकत और हमदर्दी के जाल के सबसे बाबरकत मराकज़ की तरफ चलेंगे, जिन्हें अवामी लंगर खाने कहा जाता था। वो जगहें जहाँ दस्तरखान सब के लिए खुले होते थे और कोई खुद को तन्हा महसूस नहीं करता था। तब तक नेकी के रास्ते और शफकत के नक्शे कदम को ताकुब करते रहिए। एक हाथ बढ़ता है, एक ज़िंदगी बदल जाती है और तब कहानी मुकम्मल होती है। देने वाले हाथ की कहानी में अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात की उम्मीद के साथ अपनी मेज़बान मिसबा शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। देने वाले हाथ की कहानी।

आज से ठीक 10 साल पहले कैलेंडर पर 15 जुलाई 2016 की तारीख थी। तुर्की ने अपनी तारीख की तारीख तरीन रातों में से एक का सामना किया। फेतों के दहशतगर्दों ने कौम का ही असलहा कौम के खिलाफ तान लिया, लेकिन एक ऐसी चीज थी जिसका उन्होंने अंदाजा नहीं लगाया था, तुर्क कौम का गैर मुतजलजल अज़्म। अब हम उस तारीखी रात की तारीख पर घंटा ब घंटा, मिनट पर मिनट दोबारा नजर डाल रहे हैं। मालूमात, दस्तावेजात और कभी ना भूलने वाली बहादुरी की दास्तानों के साथ। जुमे के रोज जब घड़ी ने रात के 9:30 बजाए तो दारुल हुकूमत अंकारा में जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर से गोलियों की आवाजें गूंजी। अवाम जो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है, उसने आसमान की तरफ देखा। बागियों के कब्जे में मौजूद F-16 तैयारों ने लोगों को खौफजदा करने के लिए अंकारा की फिजाओं पर निचली परवाजें शुरू कर दी थी। यह खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई। जैसे ही बगावत की कोशिश का पता चला, अंकारा के नडर शहरी जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर के सामने जमा होना शुरू हो गए। लेकिन दहशतगर्द बेरहम थे। फेदों के कातलों के जेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर से जमहूरियत के लिए सड़कों पर निकलने वाले मासूम लोगों पर गोलियों की बारिश कर दी गई। आने वाले घंटों में जनरल स्टाफ के सरबराह खुलूस याकर और आला दर्जे के कमांडरों को बागी एक हेलीकॉप्टर के जरिए किसी नामालूम मकाम पर ले गए। इसी लम्हे सबकी नजरें इस्तांबुल पर टिक गईं। ना सिर्फ अंकारा बल्कि इस्तांबुल भी निशाने पर था। मुल्क को अफरा तफरी में धकेलने के ख्वाहिशमंद फेतों के दहशतगर्दों ने टैंकों के जरिए बास्फोरस पुल और फातिह सुल्तान मोहम्मद पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। रियासत ने इस बगावत के खिलाफ अपना सरकारी बयान देने में देर नहीं की। रात 11:02 पर वजीर आजम बिन अली यिल्दिरिम कैमरों के सामने मौजूद थे। दर हकीकत हम एक बगावत का सामना कर रहे हैं। चेन ऑफ कमांड के बगैर फौज के अंदर कुछ अफराद की जानिब से एक गैर कानूनी कार्रवाई की गई है। इस बयान के ठीक चंद मिनट बाद रात 11:18 पर बागियों ने पहला बम अंकारा के जिला गोलबाशी पर गिराया। पुलिस एविएशन डिपार्टमेंट पर बुजदिलाना हमला किया गया। 16 जुलाई के इब्तदाई मिनटों में अगला निशाना मुल्की इंटेलिजेंस का दिल था। हेलीकॉप्टरों ने येनी मोहल्ले में वाकई MIT नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन की इमारत पर फायरिंग कर दी। लेकिन इंटेलिजेंस एहलकारों ने हथियार नहीं डाले, बल्कि अपने पास मौजूद असलहे से हेलीकॉप्टर पर फौरी जवाबी फायरिंग। इसी दौरान वर्दी पोच दहशतगर्दों का एक ग्रुप सरकारी TV TRT की राहदारियों में दाखिल हो चुका था। वो कौम की स्क्रीन को खामोश करना चाहते थे। उन्होंने TRT के मुलाजमीन को यरगमाल बनाया और इदारे के आमदोरफ्त के रास्ते बंद कर दिए। सदर रजब तैयब एर्दोगान उस

इसराइल और गाजा में जनाजे के दौरान हमला करते हुए 8 फलस्तीनों को शहीद और 20 को जख्मी कर डाला। और तुर्की आफात हंगामे हालात के इदारे के मुताबिक हफ्ते की सुबह सवेरे तुर्की के मशरक की सुबह मलातिया में 5 की शिद्दत का जलजला है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक इस हवाले से कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। सामी इसके साथ मेरे आज की नशरियात अपने अख्ताम को पहुंचती हैं। कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने मेजबान इमरान ओपल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।